0: हेमकुंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच चुकी है।
1: ここで芸能生活10周年記念の作品をもう一曲、乙女のハワイ初恋を歌って、西条康作詞、万城目たらし作曲、それは内緒。